डॉक्टर राकेश मंडल एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ फिजिशियन इंडोक्राइनोलॉजिस्ट ब्लड प्रेशर सुगर तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिवार डॉक्टर इकबाल अहमद एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ यूरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिवार डॉक्टर वरुण देव एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ सर्जन नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिवार डॉक्टर नीरज खड़का एमबीबीएस एमडी वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिवार वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजू घिमिरे प्रत्येक दिन वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबेश कुमार शाह प्रत्येक दिन डॉक्टर शिवराज शर्मा एमबीबीएस एमएस कैंसर सर्जन प्रत्येक शनिवार डॉक्टर सरोज अधिकारी एमबीबीएस एमडी मनोचिकित्सा

0: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरङ। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सञ्जु घिमिरे प्रत्येक दिन; वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेश कुमार शाह प्रत्येक दिन; डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन प्रत्येक शनिबार; डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार; डाक्टर अनिश अधिकारी, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे; डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म; डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ग्राड चोक, मोरङ। मोबाइल नम्बर 98520 48 247, फोन नम्बर 021548786।
1: फुड प्रोडक्ट का उत्पादन भुजिया, दाल मोट, मटर फ्राई, चिप्स को सफलता पछि चादनी भुजिया ले मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ। तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाउ, सधैं रमाऊ। साथीवाला फुड प्रोडक्ट सुन्दर रहेछ 9 बुधबारे मोरङ, प्रोप्राइटर रमन कार्की।
2: पवित्र जल सुन्दर हरैचा 11 बेलैपुरमा उत्पादित पवित्र जल सबै पिउने बानी बसालौ। आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गरौं। सफा, स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानीका लागि पवित्र जल। पानी जीवनका लागि हो भने सम्झौता किन। सम्पर्क पवित्र जल उद्योग सुन्दर हरैचा 11 बेलैपुर मोरङ। मोबाइल नम्बर 98421484444, 98104553। पवित्र जल भएपछि म त ढुक्क छु। तपाईं

0: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दस मोरङ। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्गेलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइरोइड रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर संजु घिमिरे प्रत्येक दिन; वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेश कुमार शाह प्रत्येक दिन; डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन प्रत्येक शनिबार; डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार; डाक्टर अनिश अधिकारी, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे; डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म; डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ग्राड चोक मोरङ। मोबाइल नम्बर 98520 48 247, फोन नम्बर 021548786।
1: फुड प्रोडक्ट का उत्पादनहरू भुजिया, दालमोट, मटर फ्राई, चिप्सको सफलता पछि चादनी भुजियाले मिठो स्वादमा पालक पनिरको पनि उत्पादन शुरू गरी बजारमा ल्याइसकेको छ। तपाईँ हाम्रो सहरमा उत्पादन भएको पालक पनिर खाऊ, सधैँ रमाऊ। साथीभरा फुड प्रोडक्ट सुन्दर रहेछ 9 बुधबारे मोरङ। प्रोप्राइटर रमन कार्की।

0: समाचार संचार प्रस्तुत गर्दछ
1: सबल अनि विश्वसनीय बैंक
2: शुभम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज।

0: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरङ। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर संजु घिमिरे, प्रत्येक दिन। वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेश कुमार शाह, प्रत्येक दिन। डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा, प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार। डाक्टर अनिश अधिकारी, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे। डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ग्राड चोक मोरङ। मोबाइल नम्बर 98520 48 247, फोन नम्बर 021548786।
1: साथीबाट फुड प्रडक्टका उत्पादनहरू भुजिया, दालमोट, मटर फ्राई, चिप्सको सफलतापछि चाँदनी भुजियाले मिठो स्वादमा पालक पनिरको पनि उत्पादन सुरु गरी बजारमा ल्याइसकेको छ। तपाईँ हाम्रो सहरमा उत्पादन भएको पालक पनिर खाऊ, सधैँ रमाऊ। साथीबाट फुड प्रडक्ट सुन्दर रहेछ 9 बुधबारे मोरङ, प्रोप्राइटर रमन कार्की।

0: नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय।
1: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरन। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सञ्जु घिमिरे, प्रत्येक दिन। वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभेश कुमार शाह, प्रत्येक दिन। डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा, प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार। डाक्टर अनिस अधिकारी, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे। डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक मोरन। मोबाइल नम्बर 98528427, फोन नम्बर 021548786।
2: Who are you?

0: भएपछि म त ढुक्क छु, तपाई नि।
1: गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरेचा दस मोरङ। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्देलद्वारा सम्पूर्ण स्त्रीरोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेटरोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्ररोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ प्रत्येक शनिबार; वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सञ्जु घिमिरे प्रत्येक दिन; वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेश कुमार शाह प्रत्येक दिन; डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन प्रत्येक शनिबार; डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार; डाक्टर अनिस अधिकारी, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस 24 घण्टा; डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे; डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म; डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक मोरङ। मोबाइल नम्बर 98528427, फोन नम्बर 0215487।